0: பாரதிய சேனா, பாரதிய சேனா.
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
2: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: शिला चढ़े चढ़े जब जब जिधर निकल पड़े घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: நேரம் பகல் ஒரு மணி.